0: कोर्ट का वक्त खत्म हो चुका है। इस मुकदमे का फैसला अगले महीने की 18 तारीख को सुनाया जाएगा।
1: ओ, मेरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली तुमने?
2: तुम भी कातिल, हम भी कातिल। अब वक्त जाया मत करो, अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। तुम्हारी जवानी की किताब को करीब से पढ़ना चाहता हूँ।
3: रेडिएशन, द नंबर वन स्टेशन फॉर द पागल एशियन। पागल एशियन,
4: व्हाट द यू ऑलवेज से, नो वन हैज सेंट इन और रेफरेंस्ड अ लाइन मोर पर्वी और लेट्रस देन दैट वन। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड यू नो, you can go to the Punjabi butchers, whatever it is, if you eat meat in a restaurant, and you know there's always someone horny there, yeah, right at the end, right, like looking over at, oh, looking at your girlfriend, whatever it is, man, this is too much. Anyway, Mukaddama, Jazzy B, Sukhchindra Shinda, Local Attraction, and Radiation, the number one station for the Asian invasion. Let me hit you with this, yeah. Brain is fully firing up. It's Diary by Padam. Here we go.
3: Radiation, the number one station for the Pagal Asian.

0: Radiation, the number one station for the boggle for the Asian. Boggle Asian.
1: क्या हुआ बेटी? क्या बात है?
2: अंकल, अब विशाल, विशाल प्लॉट नंबर 13 में फंस गया है।
1: क्या हुआ विशाल को?
2: अंकल, अंकल, वो औरत नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। अंकल, अगर विशाल को बचा लीजिए, नहीं तो डायन उसे मार डालेगी।
1: अच्छा, अच्छा, एक मिनट, एक मिनट।
3: हाँ, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग।
1: देखिए मैं गुलमोहर लेन प्लॉट नंबर 12 से सक्सेना बोल रहा हूँ। यहाँ प्लॉट नंबर 13 में एक औरत मेरे बेटे को मार देना चाहती है।
3: क्या कहा? प्लॉट नंबर 13?
1: जी हाँ।
4: प्लीज जरा जल्दी आइए।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
2: चलिए अंकल।
0: देव, रिस्पेक्ट टू यू ब्रो। प्लॉट नंबर 13, प्लॉट नंबर मेरा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट, नंबर मेरा। बट या, प्रेस द बटन करेक्टली। दिस ट्रैक Verdian, the last track, got a message coming. Wang, Lundi the Bawa, Desi Crew, Bunty Baines, on My Roots. This track over here, Verdian, just means enemies. Explicit lyrics warning. X Fader, so X, who's he on the track with? X Fader, featuring Rumu Hans. Okay, let's do it. Let's go. Always here to support, man.
5: Radiation, the number one station for the boggle for Asian.
6: One time.

0: क्या हुआ बेटी, क्या बात है?
1: अंकल, अब वो विशाल, विशाल प्रॉटो में तेरा भी फंस गया है।
0: क्या हुआ विशाल को?
1: अंकल, अंकल, वो औरत नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। अंकल, अगर विशाल को बचा लीजिए, नहीं तो डायन उसे मार डालेगी।
0: अच्छा, अच्छा, एक मिनट, एक मिनट।
2: हाँ, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग।
0: देखिए, मैं गुलमोहर लेन प्लॉट नंबर 12 से सक्सेना बोल रहा हूँ। यहाँ प्लॉट नंबर 13 में एक औरत मेरे बेटे को मार देना चाहती है।
2: क्या कहा, प्लॉट नंबर 13?
0: जी हाँ।
3: प्लीज जरा जल्दी आइए।
2: हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
1: चलिए अंकल।
4: रेडिएशन, द नंबर वन स्टेशन फॉर द पागल एशियन। पागल एशियन।
5: There we come. I'm gonna do Desi. Indie Girl, the video to it, check it out. Check out the video to it. So I downloaded it in like high quality yesterday, like early hours of the morning. I was checking it out. I thought, yo, my tiredness went away. I thought, no, why did I watch it at 2:50 something in the morning? I thought, no, no, just avoid watching videos that time in the morning when I got a radio show in the morning to do as well. So like, no, but I'll watch it again later on today. I'm honored. And I love the production. It's a good video. I like the video as well. Dab on Radiation, the number one station for the Asian invasion. Amadeep, A-M-M, space, D-E-E-P. Brother sent over the track called Lowrider, yeah. Check it out. Brother Mehi's from God of Music sending over one as well. He says the mix is not 100%, I think. But to have that exclusive for my show, it's an honor. So hopefully not over in the next, I don't know, like 36 minutes or something, then I can play it out. Yeah, this is Lowrider on Radiation, the number one station for the Asian invasion. Let's go.
4: Radiation, the number one station for the Pagal Asian.

0: Radiation, the number one station for the Boggle for the Asian. Boggle Asian.
1: क्या हुआ बेटी? क्या बात है?
2: अंकल, अब विशाल, विशाल प्लॉट नंबर 13 में फंस गया है।
1: क्या हुआ विशाल को?
2: अंकल, अंकल, वो औरत नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। अंकल, अगर विशाल को बचा लीजिए, नहीं तो डायन उसे मार डालेगी।
1: अच्छा, अच्छा, एक मिनट, एक मिनट।
3: हाँ, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग।
1: देखिए मैं गुलमोहर